0: सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

श्रुति साडोलिकर की आवाज़ में। अभी आपने सुना ये भजन कौशल राघव की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: कि 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख चित्रा भादुड़ी का।
1: आजकल सेवा की चर्चा कहीं भी और कभी भी सुनी जा सकती है, किंतु सेवा कार्य कहने सुनने में जितना सरल है, वास्तव में वो उतना सरल है नहीं। सेवा मार्ग में आने वाले संकट मनुष्य को विचलित कर सकते हैं और स्वयं उसके मन का अहम भाव सेवा मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बलिदान करके भी और कष्ट सहन करके भी सेवा करनी पड़ सकती है। किसी भी अवसर पर उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इस सेवा का श्रेय प्राप्त करूं। सेवा करने का सौभाग्य यदि किसी अन्य को प्राप्त हो जाए तो ईर्ष्यालु होने के बजाय उसे निर्मल मन से सहायक बनाना चाहिए। सेवा के मौके की तलाश सेवक का गुण नहीं, स्वार्थी का चरित्र माना जाता है। सेवा का महत्वपूर्ण और उदात्त रूप वही है जिसमें स्वार्थ की किंचित भावना भी नहीं हो। सेवा करने वाले के मन में ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं औरों को कुछ प्रदान कर रहा हूँ। सेवा की भावना सहज उत्पन्न होना चाहिए जिसमें अहंकार या स्वार्थ को कोई स्थान नहीं हो। सेवा में ये बंटवारा भी कोई अर्थ नहीं रखता कि ये छोटी सेवा है और ये बड़ी सेवा। यदि सेवा कार्यों और उनके परिणामों से सेवक अनासक्त हो जाता है तो बड़े छोटे के तुच्छ विकारग्रस्त द्वंद से मुक्त होकर वो सच्चा सेवा कार्य कर सकता है। सेवा समाज की

0: भौतिक दशाओं में सुधार करना, रूढ़ियों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करना, रोगादि के प्रकोप में सहायता करना, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करना आदि सेवा के अनेक रूप हैं। किंचित समृद्ध और उन्नत समाज में कला, साहित्य और संस्कृति के उदात्त रूप की प्रतिष्ठा करना आदि भी एक प्रकार से सेवा ही है। सबका ध्येय एक ही है कि दुख तप्त, अशिक्षित, जीवन धारण में असमर्थ, उन्नत दशा की प्राप्ति के लिए संघर्षरत मनुष्य की सहायता करना। सेवा के दो प्रकार बनाए जा सकते हैं। एक, औरों के जीवन में उन वस्तुओं, साधनों, परिस्थितियों का जुटाना जो उनके लिए अनिवार्य है, और दूसरा, मनुष्यों के जीवन की उन अड़चनों, बाधाओं को दूर करना जो उनकी उन्नति में बाधक हो। किसी भी प्रकार की सेवा हो, दो बातें आवश्यक है। एक, हमारे मन में अहम का भाव नहीं होना चाहिए, और दूसरे, सेवा का कोई प्रतिदान मिल गया या जिस सेवा के साथ प्रतिदान की अपेक्षा रही वो सेवा शुद्ध सेवा नहीं रहती। सेवा का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता सिवाय कर्ता के आत्मिक संतोष के। कई धनवान व्यक्ति सार्वजनिक सेवा संस्थाओं को बड़ी बड़ी धनराशि दान करते हैं और इसे परोपकार मानते हैं। ये नहीं कि ये सेवा कार्य नहीं है, किंतु ये भी नहीं कि यही सेवा का एकमात्र तरीका है। ईश्वर ने जिसे जितना जिस रूप में समर्थ बनाया है, उसी रूप में उसे सेवा करना चाहिए। सेवा के लिए धन दान करने को ही सब कुछ और महत्वपूर्ण मान लेना भूल है। वे लोग जो अपनी देह को कष्ट देकर सेवा कार्य करते हैं, किसी भी रूप में धन दान करने वालों से कम नहीं। सेवा तो ये भी है कि अवसादग्रस्त निराश हृदय में आप साहस का और आशा का दीप प्रज्वलित कर दें। मानव जीवन में जहाँ कहीं भी दुख, अभाव, कष्ट, निराशा, अवसाद या खिन्नता है, वहीं सेवा की आवश्यकता है, और उसके अनुरूप ही सेवा का रूप होगा। वास्तव में जीवन में चारों तरफ सेवा के अनेक कार्य और मार्ग फैले हुए हैं। आवश्यकता है समर्पण की, त्याग की, लगन की और अहम रहित भावना की। कार्यों की विविधता इतनी है कि सेवा कार्य में लगने वालों के लिए साधनहीनता अथवा शक्तिहीनता के बहाने बनाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हर व्यक्ति में बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत सी सामर्थ्य है, यदि वो उनका उपयोग कर सके। टूट रहे हृदय को आशा और साहस के दो शब्द और एक मधुर मुस्कान भी उसकी सेवा है। अतः ये कहना कि अवसर, साधन, सामर्थ्य या शक्ति का अभाव है, हमारे मन में सेवा के प्रति समर्पण की कमी का द्योतक है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन आलेख था चित्रा भादुड़ी का। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कगार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया।

श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आई श्रोताओं, अब हम आपको दे दें जानकारी हमारी आज की सभा की शेष कार्यक्रमों की।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का वक्त होगा सुबह 7:20।

सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत के कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 8:15 पर। महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:30 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का आनंद आप उठाइएगा सुबह 9 से 10 तक। सुबह 10 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप लीजिएगा सुबह 10:05 पर, 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 11 आप आनंद लीजिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। अब रुख करते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा की ओर। युवाणी कार्यक्रम के साथ शुरुआत होगी सभा की शाम 5:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट हम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:00।

शाम 6:30 पर आप लुत्फ़ उठाइएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:21 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 पर आप सुनेंगे हेलो ग्राम सभा। एक बार फिर रात 8 बजे आप लुत्फ़ उठाइएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। रात 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। और रात 9 बजे से आप आनंद लीजिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। रात 10:30 पर सदाबहार फिल्मी गीतों से का आनंद आप उठाइएगा। रात 11 बजे समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। FM बैंड 101.3 MHz पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:50 हुए हैं। आनंद लीजिए कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना मनमौजी फिल्म का ये नगमा। राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत से सजाया था इस गीत को मदन मोहन ने। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दीवार से। आर डी बर्मन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल और आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये नगमा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल। संगीत से सजाया है इस गीत को रोशन ने और फिल्म का नाम है 1963 की मशहूर फिल्म दिल ही तो है। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

निगाहें मिलाने को जी चाहता है, आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म थी दिल ही तो है, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत से सजाया था रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है और आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने, और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज 12 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही दोबारा

0: फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।
1: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36 हजार से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
2: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बनाकर के इस पे काम करने का निर्णय किया है। उससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: कि ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,00,000

0: 37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी 12 के 4 शावक कल सुबह एक मांद के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे। वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
2: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार, बालाघाट आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपका दोस्त नितेश मिश्रा। और आज के इस सुहानी सुबह में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज का दिन नई उम्मीदों का है। जैसे कि कहा गया है, मेहनत का फल और समस्या का हल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। उसी सकारात्मक सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। दोस्तों, सबसे पहले आज की बात में हम आज चर्चा करेंगे जिंदगी की एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं कि शांति और समझदारी जीवन को कैसे बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है, दो घड़े और नज़रिए का फ़र्क।

एक गांव में एक व्यक्ति दो घड़ों में पानी भरकर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था, जिससे आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। फूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहता था कि वह अपने मालिक के लिए पूरा पानी नहीं ला पाता। एक दिन उसने मालिक से माफ़ी मांगी। मालिक मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने रास्ते के किनारों को देखा? फूटे हुए घड़े वाली तरफ सुंदर फूल खिले हुए, जबकि दूसरी तरफ मिट्टी सूखी है। मुझे पता था कि तुम पानी टपकाते हो, इसलिए मैंने उस तरफ फूलों के बीज डाल दिए थे। तुम्हारी वजह से ही आज यह रास्ता इतना सुंदर है। घड़ा ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा, ये कमी नहीं, ये कामयाबी है। तो दोस्तों, जीवन की सीख कमियां ही खूबी है। जीवन में हमारी कमियां ही हमें दूसरों से अलग और खास बनाती है। नज़रिया बदलें। अगर हम अपनी कमियों को कोसने की बजाय उनका सही उपयोग करना सीख लें, तो हम अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई छोटी सी मदद भी ईश्वर की नज़रों में बड़ी होती है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको आज की यह बात? अक्सर हम अपनी छोटी छोटी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन याद रखिए, यही कमियां किसी और के जीवन में फूलों जैसी खुशबू भर सकती है। तो आज का विशेष यदि हम बात करें आज के एक मंत्र की, तो जिंदगी का मतलब खुद को ढूंढना नहीं बल्कि खुद को बनाना है। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुनते हैं एक मधुर गीत जो आपकी रूह को सुकून दे और जोश से भर दे।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान।

करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

लाल मर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज भूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: माँ, मैंने प्रदेश की नंबर वन वैनगंगा आईटीआई में एडमिशन ले लिया है।
1: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों बेटा?
0: माँ, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का रिजल्ट, नौकरी तो पक्की समझो। इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही है। साथ ही विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज, सुनिश्चित छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
1: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।
2: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात आज के विचार की, जो हमने लिया है महान विचारक स्वामी विवेकानंद की कलम से। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जी हाँ, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे ना तो काम ठीक से होता है और ना ही हमें मानसिक शांति मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार हमें एकाग्रता की शक्ति सिखाता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हों जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, या हमारे बालाघाट के मेहनती किसान भाई, अगर हम अपने वर्तमान कार्य में पूरी श्रद्धा और लगन लगा दें तो सफलता को हमारे पास आना ही होगा। खैर, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त है एक मधुर गीत का। सुनिए एक खूबसूरत नगमा और आनंद लीजिए अपनी सुबह का।

को वर्ष 1999 में बना। 13 मई वर्ष 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता। 13 मई वर्ष 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अब जानते हैं आज की तारीख में जन्मे महान शख्सियत के बारे में। 13 मई 1901 को जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र का। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म भी आज ही की तारीख को वर्ष 1918 में हुआ। अब हम जानते हैं जिन्होंने इस दुनिया से आज की तारीख में अलविदा कह दिया था। श्रोताओं, अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक आर के नारायण का निधन आज ही की तारीख यानी 13 मई वर्ष 2001 में हुआ था। प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी का निधन आज ही की तारीख में सन 1951 में हुआ था। 13 मई 1950 को निधन हुआ था जाने माने प्रसिद्ध पुरातत्वविद रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर का। इतिहास के झरोकों से निकलकर अब बढ़ते हैं सुरीली दुनिया की ओर। 13 मई की इस ऊर्जा भरी सुबह में पेश है आप सभी के लिए फिल्म परिचय का यह सदाबहार गीत, जिसे किशोर दा ने अपनी मखमली आवाज से सजा दिया था।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। श्रोताओं, ये नगमा हमें निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। चलिए अब पलटते हैं आज की तारीख के इतिहास के पन्ने। आज की तारीख है 13 मई और हम बात करेंगे 13 मई की प्रमुख घटनाओं के बारे में। 13 मई वर्ष 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। आज ही की तारीख जापानी छात्र के नागुई विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही आज ही की

0: माँ, मैंने प्रदेश की नंबर वन वैनगंगा आईटीआई में एडमिशन ले लिया है।
1: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों बेटा?
0: माँ, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का रिजल्ट, नौकरी तो पक्की समझो। इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही है। साथ ही विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज, सुनिश्चित छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
1: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।
2: एक बार फिर आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। अब कार्यक्रम में बारी है कृषि सलाह की। किसान भाइयों, अभी रबी की फसल कट चुकी है और ध्यान रखें, खेत में नरवाई यानी फसल के जो अवशेष होते हैं उन्हें बिल्कुल न जलाएं। इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसकी जगह आप गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी में छिपे कीड़े और बीमारियां तेज धूप से खत्म हो जाए। साथ ही जिन भाइयों ने मूंग लगाई है, वे नमी का ध्यान रखें और कीटों के प्रकोप पर निगरानी रखें। ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से भी छिड़काव कर सकते हैं। बालाघाट के हमारे किसान साथियों, बदलते मौसम को देखते हुए अपनी कटी हुई फसल और अनाज को सुरक्षित गोदामों में रखें, क्योंकि मेहनत आपकी साथ हमारा, इसी संकल्प के साथ बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें। तो चलिए अब खेतों की हरियाली और खुशहाली को समर्पित करते हुए सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, अब हम लेकर आए हैं हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यानी रोजगार सूचना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB की ओर से अस्पताल सहायक हॉस्पिटल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल पदों की संख्या है 1200। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच। पात्र उम्मीदवार 21 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार सूचना की विस्तृत जानकारी के लिए मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esp.mp.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब बातों, गीतों और यादों का ये कारवा यहीं तक था। आज हमने 13 मई के इतिहास को जाना, स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों को सुना, अपने भीतर महसूस किया, साथ ही किसान भाइयों के लिए जो सलाह साझा की, उम्मीद है उनके खेतों में खुशहाली लाएगी, और युवाओं के लिए जो रोज़गार सूचना लेकर आए, निश्चित उन्हें भी रोज़गार के अवसर उसी से प्रदान होंगे। तो चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, समय और समझ, खुश किस्मत लोगों को ही एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं होती और समझ आने तक समय निकल जाता है। इसलिए अपने आज के इस हर पल का भरपूर आनंद लें और अपने सपनों की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला आर एल कटरे और साथी का। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की, और मैं था आज आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश मिश्रा। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, आपके अपने प्रिय कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट में एक नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार
1: के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल K कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: छत्रवशी एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने

0: खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव

0: पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इस नज्म के साथ।

जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। प्रस्तुत है महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

श्रोता बहनों नमस्कार, आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपकी रेडियो सखी उमा नकपुरी, तो स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए सखियां, आप कैसी हैं? आप तो ठीक ही होंगी, और गर्मी भी अभी बहुत पड़ रही है। जी हाँ श्रोता बहनों, आज है 13 मई। ये दिन हम सबके लिए बहुत ही खास है, और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत एक छोटी सी कविता के साथ करते हैं। 13 मई का दिन सुहाना इतिहासों के नाम, जन जन की आवाज बनकर संसद आगे आई। भारत माँ के आंगन में नई सुबह मुस्कुराई, नारी शक्ति साथ चले तो बढ़ता देश महान। शिक्षा साहस और कर्म से मिलता नया सम्मान। मिलजुल कर हम सब बोले, प्रेम से रहें, लोकतंत्र की राह दिखाएं, भारत देश हमारा। जी हाँ श्रोता बहनों, भारत के इतिहास में 13 मई यानी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। देश में लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिन एक मील का पत्थर है। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। यह दिन हम लोकतंत्र की शक्ति, जनता की आवाज़ और संविधान के सम्मान का संदेश देता है। जी हाँ श्रोताओं, सत्य अहिंसा और न्याय की राह, यही हमारे भारत की चाह है। हम सब मिलकर प्रण करें और लोकतंत्र की गरिमा का सदा ऊँचा रखें। श्रोता बहनों, हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। आप सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोता पहनों, संगीत हमारे जीवन का वह मधुर स्वर है जो हर भावना को सुंदर बना देता है। खुशी हो, दुख हो, उत्सव हो, प्रार्थना हो, संगीत हर पल हमारे साथ रहता है। भारतीय संगीत की परंपरा बहुत समृद्ध है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत हमारी संस्कृति की पहचान है। गांव की मिट्टी से निकले लोकगीत, मंदिरों की भक्ति की धुन, हर स्वर में हमारी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। श्रोता बहनों, जब हम संगीत की बात करते हैं तो आज हमने बातचीत की है संगीत शिक्षिका श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव से। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। प्रस्तुति है कुंवर विक्रम सिंह की। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास बातचीत जिसमें हम संगीत की दुनिया से जुड़ी कुछ अनमोल बातें जानेंगे। संगीत केवल मनोरंजन की साधना ही नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को सुकून, ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अनुभवी संगीत शिक्षक जिन्होंने अपने ज्ञान और साधना से कई विद्यार्थियों को संगीत की राह दिखाई। तो आज हमने उनसे बातचीत की है, उन्हीं से हमने जाना है संगीत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। पहले तो मैडम आप अपना परिचय दीजिए
1: सभी श्रोताओं को। मेरा कृष्णा श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। मैं भोपाल से हूँ और मेरी सारी संगीत में जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है, भोपाल यूनिवर्सिटी से मैंने संगीत में एमए किया और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने विशारद किया गायन के क्षेत्र में।
0: मैडम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने संगीत का ही कैरियर क्यों चुना?
1: और गायन मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे को शुरू से बचपन से ही मैं अच्छा गाती थी, तो फिर बाद में मैंने सोचा इसको पूरा प्रॉपर सीखा जाए क्योंकि हम पिक्चर के गाने गाते थे बचपन में, इतना तो कुछ पता नहीं था। विविध भारती पे रेडियो के गाने सुनते थे, तो फिर बाद में ऐसा लगा कि थोड़ा इसको अगर करियर के रूप में ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। और वही उद्देश्य सामने रख के मैंने फिर संगीत की पढ़ाई की और आगे तक मैं मतलब उसको लगातार मैंने
0: जारी रखा।
1: और मेरे फिर मतलब पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो गई, मैं पूना चली गई। वहाँ पे मैंने वसंतराव जी के पट्ट शिष्य पंडित पद्माकर गुरु जी से मैंने 9 साल केवल महफिल की गायकी सीखी, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल, क्योंकि मेरे को उसी क्षेत्र में रहना था प्योर, तो उनसे सीखा। उसके बाद ही मेरे गुरु जी ने मुझे मंजरी आलेगावकर, मेरी दूसरी गुरु है, जयपुर घराने से वो बिलोंग करती हैं, तो मैंने उनसे सीखा, उनसे 20 साल तक सीखा मैंने। और अभी मैं वही क्लासिकल का ही परफॉर्म ज्यादा करती हूँ।
0: कृष्णा जी ये बताइए, जैसे आपको संगीत में ही आपने अपने करियर क्यों बनाया? करियर के और भी क्षेत्र थे।
1: ये मेरे पसंद का सब्जेक्ट था और मुझको ऐसा लगता था इसीलिए मैंने इसको चुना।
0: कृष्णा जी, जब हम संगीत की बात करते हैं तो क्या आपने किस प्रकार का संगीत सीखा है? शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है या लोकगीत है?
1: मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, उसी को ही मैंने अपनाया और अभी तक मैं अंत तक वो ही अपनाऊंगी। एज ए हॉबी रूप में मैं सिखाती हूँ लाइट सुगम संगीत, पर मेरा तो शास्त्रीय संगीत ही है, मेरी जिंदगी है।
0: जैसे हमने सुना है कि शास्त्रीय संगीत बहुत टिपिकल रहता है, बहुत कठिन रहता है, तो उसमें फिर आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं?
1: कठिन नहीं रहता, अगर हमको वो ही सीखना है तो वो कठिन नहीं लगता, तो उसके सारे जो भी रास्ते हैं हम उसको फॉलो करते गए और उसको मैंने आसान कर लिया अपने लिए।
0: जैसे आप संगीत के एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप

0: आपका कैसा अनुभव रहा संगीत के क्षेत्र में? एक क्वेश्चन फिर से कर देती हूँ ना, आप एक संगीत शिक्षक के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा?
1: मेरा अनुभव मैं अच्छा रहा, पर ये कि मैं जिस तरह से मैं स्टूडेंट रही वैसे मेरे को बहुत कम स्टूडेंट मिले, पर ये कि मैं चाहती हूँ कि अगर इस चीज को अच्छे से जिद से दिल से सीखा जाए तो उसमें बहुत लाभ होता है। मतलब उसका आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्यों सीखा शास्त्रीय संगीत, अगर आपने शिद्दत से आप उस चीज को सीख रहे हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो मेरे आज के स्टूडेंट से यही कहना है कि अगर आप करियर करना चाहते तो आपको मतलब उस पे समर्पण चाहिए उसके लिए। मतलब आजकल के स्टूडेंट का क्या है कि जल्दी से आ जाए, हम आजकल ये शो होते हैं ना इंडियन आइडल, इसके लिए बच्चों को लगता है कि बस एक महीना गए हमको आ जाएगा और हम बहुत, तो वो ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है संगीत। उसके लिए अगर आप तो संगीत के लिए अगर कैरियर करना है आपको तो उसमें बहुत रियाज करना पड़ता है। इसमें सुबह का रियाज अलग होता है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नीचे स्वरों का रियाज करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो हमारे संगीत के ख्याल है बंदिश है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक एक बार प्रैक्टिस से नहीं होता, उसको हजार बार गाना पड़ता है, खाली ऐसे एक से काम नहीं चलता। तो इस तरह से हम रियाज करते हैं सुबह नीचे के सुरों का, उसको खर्ज साधन कहा जाता है नीचे के सुरों के रियाज को। उसके बाद हम अलंकार पलटा ऐसे गाते हैं, फिर तो राग जो रहता है उसमें ख्याल गायकी, आगे स्टेप बाय स्टेप इसे रियाज का उसका करना पड़ता है।
0: जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि इसमें अलग अलग राग होती है, हाँ। तो इसमें कौन कौन सी राग होती है जरा आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: राग बहुत सारे होते हैं अलग अलग, जैसे हमारे इस पूरे दिन के 8 प्रहर होते हैं तो हर प्रहर के राग बनाए गए, तो मतलब सुबह का राग अलग होता है, अर्ली मॉर्निंग का राग अलग होता है। सुबह के राग जैसे तोड़ी राग है तो उसे सुबह गाया जाता है, उसे तो क्यों गाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सुबह के जो स्वर होते हैं एकदम शांत वातावरण रहता है, तो इसीलिए उस राग को गाया जाता है सुबह, तो एक अलग वातावरण बनता है उसको गाने से। तो मैं आपको गा के बताऊं राग तोड़ी। तो राग तोड़ी में सुर रेगा कोमल लगता है और ध भी कोमल लगता है, म तीव्र लगता है। तो मैं आपको गा के बताती हूँ।

0: बहुत अच्छा संगीत सुनाया आपने, शास्त्रीय संगीत
1: जी। धन्यवाद।
0: कृष्णा जी, आप ये बताइए, जब हम संगीत

0: यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या संगीत हमारे मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है क्या?
1: जी बिल्कुल करता है कि जब जब हम तनाव में आते हैं तब अगर हम संगीत से जुड़े हुए हैं, अगर उसको सुन लिया तो हमारा तनाव हमारे हावी नहीं होता हमारे ऊपर। वो बंदिश लाने के बाद तो सारा तनाव ही गायब हो जाता है।
0: कृष्णा जी, आप ये बताइए, जो आज नए विद्यार्थी हैं और वो संगीत सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: जो संगीत सीखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो जिस भी गुरु के पास आप संगीत सीखने जाते हैं वहां पर जो जो भी बोलते हैं उनका रियाज करना चाहिए, उन्हें डेली रियाज करना चाहिए। और ये संगीत की जो महफिलें होती हैं उन्हें सुनने जाना चाहिए, खाली क्लास क्लास नहीं करना चाहिए। क्लास में तो हम लिमिटेड सिखाते हैं, पर जो प्रेजेंटेशन के लिए जो चाहिए हमको मटेरियल, वो उसके लिए उनको प्रोग्राम महफिल होती है शास्त्रीय संगीत की, उधर उनको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और बस मेन तो रियाज ही है, रियाज के अलावा कोई शॉर्टकट ही नहीं है।
0: अंत में आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि संगीत केवल सुर और ताल का मेल नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। आज की तेज भागती जिंदगी में हम अक्सर अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं, और संगीत वही रास्ता है जो हमें फिर से खुद को जोड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप संगीत सीखें या सिर्फ सुने, उसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए। यह तनाव को कम करता है, जो कि आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बिना तनाव के है, तो ये तनाव को कम करता है और मन को सुकून देता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और अंत में संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं समझे, बल्कि इसे एक साधना के रूप में अपनाएं, क्योंकि संगीत में वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ सकती है और जीवन को सुंदर बना सकती है।
0: धन्यवाद मैडम, आपने हम सभी श्रोताओं को इतनी अच्छी संगीत के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा जी, नमस्ते।

श्रोता बहनों, आगामी 17 मई को हर वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये धीरे ही धीरे हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा देते हैं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, अनियमित खानपान और योग की कमी के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले ये बड़ी बीमारी बढ़ती हुई उम्र में ही दिखाई देती थी, लेकिन अब हर युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। समय रहते रक्तचाप की जांच और नियंत्रण न किया जाए तो यह हमारे हृदय, स्ट्रोक और किडनी संबंधी समस्या का कारण बन सकता है। तो हमारी बहनें अक्सर परिवार की जिम्मेदारी में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि वे समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर अवश्य जांचें, चेक कराएं। संतुलित आहार से रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे नमक का कम सीमित सेवन करें, नियमित योग करें, तनाव से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और नशे से बचें, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। याद रखिए, स्वस्थ जीवन शैली ही स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। श्रोता बहनों, अब हम बात करते हैं गर्मियों की छुट्टी का। बिल्कुल, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हमें इसका आनंद भी लेना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी आते ही मन खुशियों से भर जाता है और इस मौसम में घूमने फिरने, सैर सपाट पर जाने और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद ही कुछ अलग होता है। पहाड़ों की ठंडी वादियां, हरियाली से भरे उद्यान, झरनों की मधुर आवाज़ और नए स्थानों की सुंदरता मन को ताजगी से भर देती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी छुट्टी

0: दावतों का इंतज़ार करते हैं। कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद करता है तो कोई प्राकृतिक स्थलों की सैर करना। यात्रा हमें नई जगहों की, नई संस्कृति और नए अनुभवों से परिचित कराती है। श्रोताओं, हमने गर्मियों में घूमने के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीजिए, हल्के कपड़े पहने और तेज़ धूप में जाने से बचें। सैर सपाट केवल मनोरंजन ही नहीं देता बल्कि मन और शरीर को नई ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसीलिए गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लें, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के साथ। गहरे पानी में जाने की जानकारी लें, माफ़ कीजिए, गहरे पानी में बिना जानकारी के ना जाएं। बच्चों को कभी भी अकेले पानी के पास ना छोड़ें, तेज बहाव वाले पानी से दूर रहें। तैरना नहीं आता है तो लाइफ जैकेट का प्रयोग करें। चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा नियमों का पालन करें। बारिश या खराब मौसम में पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहें। स्वच्छ पानी और सुरक्षित स्थानों का चुनाव करें। सैर सपाट तभी सुखद बनता है जब हम अपनी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। और हम भी इस गीत के माध्यम से सैर का लेते हैं आनंद और सुनते हैं ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोता बहनों, इसी गीत के साथ अब हम लेते हैं आपसे अनुमति। गर्मी की छुट्टियां का लें आनंद, घूमिए फिरिए, फिर नई जगहों का आनंद लें, लेकिन अब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, सावधानी और सतर्कता की सुरक्षा यात्रा की पहचान है। इसी शुभकामना के साथ महिला जगत का ये अंक संपन्न होता है। अनुमति दीजिए उमा नकपुरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम। देवीश्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लवयापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक, इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परोमा दास गुप्ता की आवाज।

आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूं या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूं, ये आपको बताने आया हूं। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

मनहर उदास जाने माने गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

जाने के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

0: संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं।
1: हम तो

0: तो हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मनहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए। और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया करें थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले

0: की चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकट राव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 हजार रुपए तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जयथरी अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर नवनीत चौबे का।
2: जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से FM बैंड

101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है 1964 की मशहूर फिल्म दोस्ती। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सनगमा।

आवाज़ मैं न दूंगा, मोहम्मद रफ़ी के बाद चलिए अब रुख करते हैं किशोर कुमार की ओर और सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये नगमा। आवाज़ किशोर कुमार की, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

इस आवाज़ के बाद अब बारी है लता मंगेशकर की आवाज़ को सुनने का। जी हाँ, रविंद्र जैन के गीत के बोल और संगीत के बद इस गीत को हम आपको सुनवाते हैं एक बार आवाज़ फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। तो आनंद लेते हैं इस नगमे का।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है,
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बार फिर द ग्रेट गैम्बलर के गीत के साथ। आनंद बख्शी के बोल, आरडी बर्मन का संगीत और गायक स्वर हैं आशा भोसले और अमिताभ बच्चन का।

0: कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं युगल स्वरों में। जी हाँ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम है आंधी।
1: बरसों बाद निकली हूँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है, भूल गई।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है,

फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
0: जी
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की

0: मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न

0: मेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: शुरू हो जाती है।
1: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
1: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
0: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा,
1: मेरे ही मौसम का एक फल है।
0: दिखाओ ना
2: अम्मा,
0: अम्मा।
2: दे
1: दूंगी
2: दो।
1: तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
0: इसका नाम
1: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
0: स्वाद है,
2: पसंद है,
0: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
0: कौन सा फल
1: नहीं समझी?
0: है? नहीं।
1: अच्छा तो फिर सुनो,

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी
3: हाँ, जब होली

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
3: लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
8: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं।

0: आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावा से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया हैं।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ
0: कितने लोग रहे?

0: होंगे?
1: अच्छा, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
1: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
3: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी,
6: यस सर।
3: ये मेज के चारों ओर।
4: जी सर।
6: उधर से। हाँ।
3: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
4: जी सर।
3: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
4: जी सर।
3: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
4: जी सर।
3: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर। यहां से पहाड़ की

0: दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर,
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर।
1: कोई शक?
0: नो नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
0: सर, सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
3: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
3: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
3: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
3: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
3: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
0: धीरे धीरे
3: तबे बहुत बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे। जी सर।
3: कोई भी उठकर नहीं चलेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
0: यस सर।
1: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.3 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

0: जिस राह पे जाना है।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल, इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया। ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेया घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के

0: प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: राम लखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से। मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मन्नन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मन्नन उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मन्नन उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत, मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जाबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मनन उदास, कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन, मनन उदास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनन उदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनन उदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि

की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोच कर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं, और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है 100 अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं, जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए, ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं, या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुला।
1: मन्ना डे की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो ज़रूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी एक और साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीज़ों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में, और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ जवाब महका गाता झूमती सपना रचना जाने कहानी सहारा बेसहारा जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन गाने बजते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता। भाई इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए, क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
1: क्या कहा?

0: तुम सब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आपको लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन से में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज़

या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बन कर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनके लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे

लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज़ और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोअर 100K लिखे हैं, यानी 1 लाख फॉलोअर हैं, 1 लाख हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज़ है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी 2 दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा

0: जा।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने के सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं हैं, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला, जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई, ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

0: जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी का

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि

पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से

0: सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निर्देशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है। अच्छा। कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता दें।
1: बता देते, देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
1: और
0: है।
1: इस शर्त पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ।

0: लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो
1: भाई मंजरी जी, मैं तो
0: जाता
1: खाने के लिए जीती हूँ, है ना,
0: है
1: क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है,
0: ना।
1: इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने
0: हाँ,
1: सुंदर
0: तब भी आप
1: सुंदर
0: मेंटेन है ना, ये
1: तो
0: बात हो
1: वही तो
0: जाती है।
1: बात
0: तो
1: है
0: इसलिए
1: कि
0: हमें संतुलन रखना है ना।
1: हाँ पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है ना,
0: बिल्कुल
1: कि
0: आनंद है, और
1: संतुलन जरूरी है
0: संतुलन बहुत जरूरी है, और गीतों का भी तो आनंद है ना। तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी। तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
2: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी

0: नई शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है
1: और
0: ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, और 1-2 महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ मैंने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्ड्रोब में। बिल्कुल, आपकी वार्ड्रोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
0: जी
1: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से
0: धूप,
1: पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी
0: हाँ
1: बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन

0: भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
1: आहार में,
0: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
1: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
0: रह
1: जीवन
0: सकते
1: गुजार
0: हैं।
1: सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक है, काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है
0: एक
1: जी।
0: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक
1: मंजरी
0: रही थी इस गाने पर, है ना? जब
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी
1: हाँ
0: पायल थिरकने लगती है, हमारी
1: भाई
0: पायल
1: मैं
0: बजने
1: देख
0: लगती
1: रही थी। तो
0: है।
1: देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
0: बहुत सारे हमारे
1: हमारे, अच्छा
0: साथियों
1: एक
0: ने।
1: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
0: और
1: है
0: अब
1: ना?
0: लेते हैं एक
1: अंतराल।
0: ब्रेक।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत सुंदर
0: और
1: बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे, उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
1: नहीं,
0: ऐसा लग
1: देखिए
0: रहा था।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
0: क्या बात
1: ऐसा
0: है।
1: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए।

0: डब्बाबंद और गैर मौसमी फल, सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
1: बिल्कुल
0: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
1: हाँ
0: बेर
1: सारे
0: खाते
1: फल
0: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद
1: अरे
0: होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे
0: खाया
1: मतलब
0: जाता है।
1: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
1: हाँ हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
0: जी।
1: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे
0: पढ़ने
1: मैंने
0: में
1: आपका
0: दिक्कत
1: पढ़
0: नहीं
1: लिया।
0: आती है ना।
1: हाँ वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है,
0: जी,
1: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
0: एक हमारे
1: दिक्कत नहीं।
0: साथी लिखते, मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत।
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तभी तो इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों, कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: लेकिन
1: ना।
0: ऐसे में मजा आता है, जिसको लगा रही मैंने दोबारा पढ़
1: पर अगर हमने
0: लिया।
1: गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि
0: हाँ
1: हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत नहीं,
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल
1: आज ये
0: बिल्कुल।
1: शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर, कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए, तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथ

0: लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले एक गाना सुन ले, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है।
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला

0: चार पांच उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है, जो पहले से तैयार किया था, वो दो तीन बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव, और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
1: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दे
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा
1: बच्चे बड़े
0: लगता
1: खुश हो
0: है।
1: जाते हैं ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस
0: बिल्कुल
1: तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना
0: बिल्कुल
1: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना
0: बिल्कुल
1: भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
0: क्या
1: एक मैं
0: बात।
1: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
0: क्या
1: बारीक बारीक
0: बात है।
1: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
0: क्या बात
1: और ये
0: है।
1: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए, है
0: हाँ, ये
1: ना।
0: बहुत
1: हमें
0: खास बात है। आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
1: हाँ, यानी
0: और
1: आलू के
0: रागी,
1: बदले हम
0: हाँ
1: शकरकंद
0: शकरकंद,
1: का इस्तेमाल कर सकते
0: बहुत
1: हैं,
0: अच्छी सुंदर
1: और
0: बताई,
1: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
0: रागी की
1: सेव
0: से।
1: यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
0: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
1: गीत
0: कमेंट्स पढ़ोगे?
1: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
0: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
1: दाबेली, कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है। गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले ही
1: साथ
0: डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले, वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखा रहता।
0: जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं, और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
0: सचमुच
1: हमारे
0: इंदौर
1: देश
0: बार
1: में।
0: बार जाने को जी
1: जी
0: करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं, आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और
1: है
0: खूब
1: ना।
0: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
1: बिल्कुल
0: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
1: फिलहाल
0: स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और है ना
1: रात
0: सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुँचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उस

0: भी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो। अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, तो ये
1: दर्जा
0: अनाउंसर का वो
1: होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और वो
1: जी।
0: पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर हैं आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युववाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युववाणी वाला बैच था, उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: खिलाड़ी के रूप
1: बात
0: में,
1: है
0: एक
1: जी,
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युववाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा,
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर
1: बात
0: का।
1: है क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, को एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे काम
1: गंगा
0: कर,
1: प्रसाद जी
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी
0: और
1: जी
0: कर रहे थे, है ना? तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उस तरह से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी।
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे, और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह

0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम तो
1: यहाँ
0: बड़े
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताइए।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ, लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई, तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस
0: क्लियर
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बुनियाद
0: जी
1: का
0: जी
1: शहर रहा
0: जी
1: है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे,
1: ओके
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे, और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था,
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे, और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ
1: चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं, बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है,
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: ओ
1: हाय रे वो
0: बढ़िया,
1: दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा
1: ना,
0: है,
1: ये
0: वाह,
1: गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: जंजर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे, फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे,
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जेम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दोहर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था
1: ये, गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता था,
0: खुद गाते थे
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था, फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर, फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे
0: कहा
1: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी, बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है, लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी,
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है, तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
0: वाह वाह,
1: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया, तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी, नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है,
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश

0: नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब
1: बिल्कुल
0: आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो, और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा। तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम भड़के का, कॉमेडी, काका की शाह, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर
0: हाँ,
1: में जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय
0: तो
1: हुए।
0: हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल
0: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने
1: जी
0: नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: हाँ,
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया, और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से
1: ऐतिहासिक
0: वो,
1: स्टेशन है जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे, मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब
1: थी। जी
0: तो मेरा अच्छा वक्त

0: गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे
0: एक साल
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस ज़माने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ
1: बिल्कुल।
0: मिले, मिश्रा साहब को भी मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी?
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, तो शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे।
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें
0: हाँ
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: जब।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर, तरन्नुम
1: जी
0: में सुना हूँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: जी।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं
1: हाँफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।

0: मिला है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू,
1: जाहिर है कि
0: धन्यवाद।
1: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
0: वो
1: होगा।
0: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
1: जी
0: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ,
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम।
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी,
0: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
0: हाँ
1: है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो
1: में।
0: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, जो पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर भी
0: नहीं
1: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
0: थे।
1: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी
0: नहीं
1: देकर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने

0: माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आपने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा जी,
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना। तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
1: ये तो नया खुलासा है हमारे
0: था।
1: लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते हैं सब कुछ है। लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाते तो
1: लेना
0: वहां तंग करना या मस्ती करना,
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आ जाती थी कि आज इसने ये क्या। और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
1: जी,
0: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो
1: रोज आ रही
0: है,
1: है।
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
1: प्रोटेक्शन,
0: जो संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ।
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही
0: सकता।
1: करें तो
0: तो ये एक
1: अच्छा।
0: अच्छा बचपन बीता।
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो
1: उनकी।
0: अपनी दुनिया थी उनके। बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। मतलब
1: हाँ।
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था। तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूं जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहां आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं,
0: हाँ,
1: एक था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: ये
0: हाँ
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन
0: बिल्कुल
1: के जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनके नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब,
1: बैठता
0: गजब,
1: था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही उनसे।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, उसने मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूँ हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूद लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
0: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
1: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
0: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
1: वो जयपुर की गजल है।
0: वाह,
1: वो शुरुआत
0: कमाल।
1: हाँ,
0: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
1: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
0: जी।
1: गजल की विधा को मैंने,
0: आपने शिफ्ट किया है?
1: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते, सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
0: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
1: तो खुद
0: मुश्किल भी है।
1: हाँ,
0: मुश्किल भी है,
1: तो उसको निभा ले जाना, और उसको तो वो भी हैरान हुए।

0: ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है, और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी, तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर
0: तो
1: सर, अरे स्वागत है बिल्कुल,
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ
1: अलग है
0: मैं जो मैं
1: जी,
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे इशारों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरापति खरापति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये, तो
1: की
0: फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुशनसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशकिस्मती है। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी जी
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा,
1: जी जी बिल्कुल
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
1: तो ये
0: उसके।
1: बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात।
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूं है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था,
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना, प्रोड्यूस
1: बिल्कुल
0: करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ, एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था, जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल, और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे,
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा

0: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट्स
0: प्रोग्राम
1: होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह,
0: जय
1: क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी,
0: उसका हमने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह,
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया है लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया,
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका
1: जी,
0: कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का,
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे
0: तो
1: बाप रे
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ चुकी इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ,
0: ये
1: तो बहुत
0: हम
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ, और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह,
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में,
1: जी,
0: हाँ, तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के
1: संस्कृत
0: तौर
1: से।
0: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा
0: इसी
1: जयपुर का
0: तरह
1: दौर
0: से
1: था
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी।
0: कालिदास का, तो वो मैंने उस रेडियो एडप्टेशन किया
1: वाह,
0: उसको, वो किया, तो ये दो बड़ी वो थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका,
0: हाँ,
1: नाट्य समूह।
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था,
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही,
1: जी, क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी
0: हाँ
1: तरह से अपने
0: हाँ
1: आपने अपने आप को झोंक दिया
0: हाँ
1: था।
0: हाँ मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया।
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी,
0: जो गोगोल का उन्होंने,
1: इंस्पेक्टर जनरल का।
0: हाँ, वो

0: कि नहीं नहीं आप करो।
1: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है, ये
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: चार कंपोजर हैं आप स्टाफ में मौजूद
0: तो
1: हैं
0: आप
1: और
0: उनको
1: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
0: जी।
1: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
0: हाँ
1: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत
0: हाँ
1: मैं नीर भरी दुख की बदली
0: हाँ
1: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
0: जी
1: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
0: जी
1: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
0: हाँ
1: लेके उसको कोई पढ़ता था और एक गीत होता था कोई गाता था,
0: वाह
1: तो उस
0: वाह
1: तरह का एक
0: वाह
1: प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
0: क्या बात है,
1: कबीर को कंपोज किया,
0: वाह
1: इनको स्टेज
0: वाह,
1: किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
0: ये चीजें
1: हुआ।
0: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
1: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: वाह वाह
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सभा के शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, युवावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे वर्षा कश्यप। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती को। उनका जन्म 13 मई 1905 को हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा की। साल 1974 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया। उनका व्यक्तित्व सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक था। फखरुद्दीन अली अहमद जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता सेवा, समर्पण और देशभक्ति से ही आती है। आइए उनकी जयंती पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार आर के नारायण जी को, जिनकी पुण्यतिथि साहित्य प्रेमियों के लिए एक भावपूर्ण अवसर है। आर के नारायण जी का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। वे भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी सरल और जीवंत लेखन शैली से भारतीय समाज, छोटे शहरों और आम लोगों के जीवन को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में मालगुड़ी डेज विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालगुड़ी नामक काल्पनिक नगर के माध्यम से उन्होंने भारतीय जीवन की सादगी, भावनाओं और मानवीय रिश्तों को बड़े ही सहज तरीके से दर्शाया। उनकी कहानियाँ आज भी पाठकों को प्रेरित करती है और मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आर के नारायण जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहित्य से प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं।

आज 13 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हुमस डे मनाया जा रहा है। हुमस एक लोकप्रिय मध्य पूर्वी व्यंजन है जिसे मुख्य रूप से चने, तिल, जैतून के तेल, नींबू और लहसुन से बनाया जाता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बेहद पौष्टिक भी होता है। हुमस केवल एक व्यंजन नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने वाला स्वाद भी है। आज के समय में ये दुनिया भर में हेल्दी फूड के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने और स्वास्थ्य बेहतर रखने में मदद करते हैं। इंटरनेशनल हुमस डे मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ खान पान के प्रति जागरूक करना और विभिन्न देशों की खाद्य संस्कृति को समझने के लिए प्रेरित करना है। आज के युवाओं के लिए ये संदेश भी महत्वपूर्ण है कि फास्ट फूड के साथ साथ हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन को भी अपने जीवन में हिस्सा बनाना चाहिए। तो आइए इस अवसर पर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और दुनिया की विविध संस्कृतियों का सम्मान करने का संकल्प लें। और दोस्तों, आज आपको बता दें कि आज है भारतीय अभिनेत्री सनी लियोनी का जन्मदिन। तो आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं पर फिल्माया ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, मई का महीना आते ही गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगती है। तेज़ धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित करता है। इन दिनों मौसम भी तेजी से बदल रहा है, कभी तेज़ गर्मी तो कभी अचानक बारिश और आंधी। ऐसे में हमें अपनी सेहत और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर के समय तेज़ धूप में अधिक देर तक रहने से शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें, हल्के और सूती कपड़े पहनें और सिर को टोपी या गमछे से ढककर रखें। गर्मी के मौसम में खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तला भुना भोजन खाने की बजाय मौसमी फल, दही, नींबू, पानी,

छाछ और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की मात्रा भी बनी रहती है और शरीर ठंडा भी रहता है। दोस्तों, बदलते मौसम का असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। बढ़ती गर्मी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बन सकते हैं। तो आइए इस गर्मी में स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लें।

दोस्तों, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी आंधी, इस तरह से मौसम होने से हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है ये तो आपने सुन लिया। तो अब ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और खुशियां बांटें, जैसे मैं खुशियां बांट रही हूँ आपसे इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, हमें खेद है नूरी फिल्म का यह गीत किसी वजह से आप पूरा नहीं सुन पा रहे हैं। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी है, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल इस कार्यक्रम में ले रहे हैं।
1: मैं निकला ओ गटी लेके।
2: अरे पर कहाँ?
3: वैनगंगा आईटीआई एडमिशन कराने।
2: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों?
3: क्योंकि यहाँ की पढ़ाई कैंपस में नौकरी तो पक्की, समझो।
2: अच्छा,
3: इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही हैं। विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज और छात्रवृत्ति के लिए एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
2: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।
0: कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है बालिका वधू फिल्म से। आवाज़ शैलेंद्र सिंह और साथियों की है।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: संदेशों के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। आइए अब हम आपको सुनवा

लव स्टोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं अब हम आपको सुनवा रहे हैं, ये है मुंबई मेरी जान, इस फिल्म का गाना। आइए सुने इस गीत को।

0: ये है मुंबई मेरी जान। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बालाघाट से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं और ये वक्त है हमारे दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का। आइए सुने इस गीत।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: गुड इवनिंग बालाघाट। सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनय श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम है और हमें हर मौसम का मज़ा लेना जब आता है तो हम गर्मियां भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब वक्त था बारिश का, ठंड का, तो हमें ये महसूस होता था कि ये मौसम सबसे अच्छा है और हमें कई बार लगता था कि हमें आम खाने कब मिलेंगे, तरबूज खाने कब मिलेंगे। तो चलिए, ये मौसम आ गया, वो मौसम जिसका आपको इंतज़ार था, छुट्टियों का। और बच्चों की जो छुट्टियां लग चुकी हैं और साथ ही साथ जो हमारे अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस सुहाने मौसम को सुहाना मनाता है हमारे आसपास का वातावरण। वैसे देखा जाए तो इन दिनों मौसम में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, कभी बारिश तो कभी धूल भरी आंधी। लेकिन जो भी हो, मौसम का ये परिवर्तन और गर्मी के मज़े हमारे कभी कम नहीं कर पाते। और छुट्टियां जो लगी हैं बच्चों की, तो उन्हें पूरा हक है गर्मी एंजॉय करने का।

तो श्रोताओं, बात ऐसी है कि हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि गर्मी की इन छुट्टियों में जो अभिभावक हैं वे गर्मियों में जो लग रहे हैं ग्रीष्मकालीन समर कैंप, उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को इस ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। अब मसलन बहुत से चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हैं हमारे आसपास जहां पर ग्रीष्मकालीन खेल शिविर लगे हुए हैं, वहां आप अपने बच्चों को इन शिविरों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो यदि चाहें तो हम देखें शहर में बहुत से ऐसे समर कैंप लगे हुए हैं जहाँ उन्हें मेहंदी है और कुकिंग क्लासेस हैं, फाइन आर्ट्स है, ये सिखाया जा रहा है। तो इन छुट्टियों का ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ लें, मज़ा लें, कुछ नया सीखें और कुछ नया गुनगुनाएं इस गीत की तरह।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम, आज विनय श्रीवास्तव के साथ FM बैंड 101.3 MHz पर आप हमें ट्यून कर सुन रहे हैं या फिर न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। चलिए, जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मैं निकला ओ गट लेके।
2: अरे पर कहाँ?
3: वैनगंगा ITI एडमिशन कराने।
2: वैनगंगा ITI ही क्यों?
3: क्योंकि यहाँ की पढ़ाई कैंपस में नौकरी तो पक्की समझो।
2: अच्छा,
3: इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा ITI से ही हैं। विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज और छात्रवृत्ति के लिए एक ही नाम, वैनगंगा ITI।
2: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट।
4: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इन दिनों ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बच्चों की लगी हैं और ग्रीष्मकालीन शिविर हमारे शहर के आसपास चल रहे हैं, चाहे खेल शिविर हों या फिर कोई अन्य शिविर। इन शिविरों का ज़रूर आप लाभ उठाएं, अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाएं और उस सबसे बढ़कर सबसे ज़रूरी बात, इन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में और गर्मी के दिनों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यही बात, यही सलाह डॉक्टर भी देते हैं और उन्हीं की सलाह के अनुसार हम आपको भी सलाह दे रहे हैं कि अपने आप को इन गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर हाइड्रेटेड रखें और अनावश्यक रूप से धूप में बाहर ना घूमें। चलिए, ये बातें आप सब जानते भी हैं और हमारा जो मकसद है आपको सूचना के साथ साथ मनोरंजन करना है, तो समर कैंप में ज़रूर बच्चों को ले जाएं। इसके अलावा देखिए श्रोताओं, इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं, कुछ नया हम सीख सकते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

तो इन छुट्टियों का फ़ायदा बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी ले सकते हैं, पेरेंट्स भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। कंप्यूटर है, कुकीज़ क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपनी मर्जी के शौक, संगीत है, गीत है, खेल है, इनमें अभी आप अपनी रुचि के अनुसार भाग ले सकते हैं और गर्मियों का मज़ा दुगना कर सकते हैं। चलिए, गर्मियों का मज़ा दुगना तब हो जाता है जब कुछ काम करते करते, कुछ सीखते सीखते या कुछ खाते पीते हमें अपनी पसंद का गाना सुनने मिल जाता है। तो चलिए, हम रेडियो पर बैठे हैं और स्टूडियो में हैं, तो आपको अगला गाना गुड इवनिंग बालाघाट में सुनवा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके काम का मज़ा दुगना कर देगा ये गीत।

गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं श्रोताओं। और इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें हम आपके साथ साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य ही है सूचना शिक्षा के साथ आपका मनोरंजन करना। तो चलिए आज बातें ऐसी आपके साथ करना चाहते हैं जो आपके और हमारे सब के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, इन दिनों बहुत सी वैश्विक परिदृश्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो पश्चिम एशिया का जो संकट है वो हमारे देश पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। और ऐसे समय में हम सबका ये पहला कर्तव्य हो जाता है श्रोताओं कि हम राष्ट्र के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे समय में जब हमारा देश कहीं थोड़ी सी भी मुश्किल में है ऐसा लगता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि ऐसे समय में जब थोड़े से संकट के बादल कहीं दूर से भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो क्यों ना हम देश का साथ दें और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाएं। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि इन दिनों थोड़ी सी मितव्ययता, थोड़ी सी बरकत का अनुपालन अपने घर से शुरू करें। जैसे कि बेवजह यदि आप मोटरसाइकिल या कार से ना घूमें और पूल बनाकर यात्रा करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे बचत होगी पेट्रोल की और डीजल की भी, और कहीं ना कहीं ये जो है हमारे देश की प्रगति में लाभकारी भी सिद्ध होगा। छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अनावश्यक जब बिजली की बचत की भी बात, अक्सर यही बात होती है कि हम बिजली भी बचत अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जिस कमरे में हैं वहीं पर का कूलर, पंखा और एसी ऑन करके रखें। अनावश्यक रूप से दूसरे कमरों में बेवजह ज़्यादा पावर के एलईडी बल्ब ना लगाएं। मीडियम जो बल्ब हैं उन्हें लगाए जा सकते हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। और इसी तरह से छोटी छोटी सी बचत जब हमारे देश पर थोड़े से संकट के बादल दूर से ही दिखाई दे रहे हैं तो गृहिणियों का, महिलाओं का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि एलपीजी गैस का उपयोग जो है संभाल कर उसका उपयोग करें। अनावश्यक रूप से बर्नर तेज़ ना चलाएं, मीडियम और लो सिम पर उसे यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं श्रोताओं जो अक्सर आपको सुनने और पढ़ने भी मिलती हैं, और हमारा ये कार्यक्रम के ज़रिए भी हम आपसे ये बातें साझा कर रहे हैं कि इन दिनों

वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में मितव्ययता कम उपयोग जो है, जायज उपयोग जैसे हम कह सकते हैं, उसको फॉलो करें और उसको अपने आचरण में लाएं तो बेहतर होगा। चलिए इसी कामना के साथ कि हम थोड़े से मितव्ययी होंगे और उन चीज़ों का अनुपालन करेंगे जिसकी अपील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से की है। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲಾಘಾಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲಾಘಾಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲಾಘಾಟ್.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर. यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का. इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो रहे हैं. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम.

शाम के 6:30 हुए हैं और श्रोताओं अब प्रस्तुत है आकाशवाणी बालाघाट से सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, हमें खेद है कार्यक्रम का ये गीत हम नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज के स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत।

तलत अजीज़ के स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना। श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम राशनी का लिखा गीत, आवाज़ स्वाति नाटेकर की है।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में सईद राही का लिखा गीत। संगीत है नदीम श्रवण का। आइए सुने इस गीत को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली का लिखा गीत। स्वर और संगीत है पंकज उदास का।

पंकज उदास के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, वक्त इतना नहीं है कि कार्यक्रम में और एक गीत शामिल किया जाए, लेकिन हाँ, एक गीत की धुन इस कार्यक्रम के समापन के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से बस थोड़ी ही देर बाद शाम 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन। शाम 7:10 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। शाम 7:21 पर हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:30 का समय होगा हेलो ग्राम सभा। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम को हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 बजे हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 8:30 का समय होगा पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार। ये तीनों ही समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आपके लिए करेंगे। रात्रि 10:30 पर हमारे स्टूडियो से सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 11:10 पर सभा के समापन की उद्घोषणा की जाएगी। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और श्रोताओं, अब कल यानी 14 मई 2026 की प्रातःकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा अपने नियत समय प्रातः

0: 8:10 पर सभा के समापन की उद्घोषणा की जाएगी। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और श्रोताओं, अब कल यानी 14 मई 2026 की प्रातःकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा अपने नियत समय प्रातः 5:15 हमारी प्रातःकालीन सभा कल 5:53 पर अपने निर्धारित समय पर आरंभ होगी। प्रातःकालीन सभा में कल आप सुनेंगे 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:30 का समय होगा कार्यक्रम चिंतन का। 6:35 पर कल हमारी प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर आप सुनते हैं रोजाना सदाबहार फिल्मी गीत। 7:21 का समय निर्धारित है हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के लिए, सुनिएगा कल हमारी प्रातःकालीन सभा में। 8:15 पर हमारे स्टूडियो से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8:30 पर श्रोताओं कल हमारी प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 10:00 पत्रिका कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुना जा सकता है, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से। 10:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी कल यानी 14 मई के प्रातःकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। जिन श्रोताओं ने अपना रेडियो सेट अभी भी ऑन किया है, हम उनको जल्दी से बता दें, श्रोताओं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से आज रात 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे स्टूडियो से पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात्रि 8:00 होगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 101.3 MHz पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or MSP for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 lakh metric tons।
4: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 lakh metric tons।
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for production of syngas and its downstream products, targeting gasification of approximately 75 million tons of coal and lignite. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad-Sarkhej-Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Cabinet has also approved upgradation

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश

0: भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉ. यादव ने सभी मंत्रियों व अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट डिजीलॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉ. यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
1: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिब्वेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जाँच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया।

0: विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड करें। साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रुपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और एनएचआई अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर और इसके साथ ही वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन सकते हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:21 और 32 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

दिव्येंदु मुखर्जी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिर कभी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अजय झिंगराम का लिखा यह गीत था। शांतनु मोइत्रा ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं हुस्न लव एंड बेट्रॉयल। इस फिल्म का गीत आवाज़ कुणाल गांजावाला और अलका याग्निक की है। समीर के बोल, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

0: कुणाल गांजावाला और अलका याग्निक के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त शाम के 7:30 हुआ चाहते हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से।
1: बुंदेली समाचार।
2: तो भैया बहनों, अभी सुने अपन ने बुंदेली समाचार और आगे बढ़ते हैं, सुनत है लोकगीत। ये गांव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

भैया बहनों, लोकगीत के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है। और जैसे कि हमने आप लोगों से बात करी थी कि अभी गर्मी के दिनों में आप मिट्टी की यदि उथल पुथल करते हैं तो जो हमें मृदा के लिए अत्यंत लाभदायी है, और हमें यदि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने हैं तो हम तो जो ही कहेंगे कि जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशकों को अपनाएं। आप चाहें तो नई फसल जो आप बोना चाह रहे हैं वे जैविक खेती के तरीके से उगाएं। आज जैविक खेती को महत्व भी बढ़ गया है। हम देख रहे हैं बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य की देखभाल करवे के लाने जैविक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि के भविष्य हेतु अत्यंत लाभदायी है। देखो, जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हमें जो भी उत्पादन मिलते हैं वो शुद्ध और स्वास्थ्य हेतु बहुत अच्छो रहते हैं। और हम तो जो ही कहेंगे कि जैविक खेती आज नहीं, जहाँ हमें आज की जरूरत नहीं है, जहाँ हमें भविष्य की जरूरत है, तो ये हमें अपनाने हैं। क्या कि यदि मृदा की उर्वरकता आपको लंबे समय तक रखने हैं तो जैविक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो चर्चा तो अपनी चलत रहे है। मनो आप लोगों को बता दें कि आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भेंट वार्ता लेके आए हैं, और हमारी भेंट वार्ता

0: को विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। विषय में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी और उनसे भेंट कर रहे हैं महेश भैया। सुनते हैं जब भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर आराधना कुमारी, जो कि सहायक प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय गंजवासोदा मध्य प्रदेश में आप व्यस्त हैं। डॉक्टर आराधना कुमारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है?
2: ये जो मृदा ताप होता है और खरपतवार नियंत्रण, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। और ये मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्रभावी तकनीक होती है, उसका कृषि में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। ये जो मृदा तापमान होता है और ये खरपतवार, दोनों ही फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रभाव ऐसा डालते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, उल्टी दिशा में, यानी कि उसकी कमी कम कर सकते हैं पैदावार को। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये मृदा का उचित तापमान सुनिश्चित करता है कि उसमें बीज की अंकुरण कैसी होगी, जड़ों की वृद्धि कैसी होगी, पोषक तत्व जो हम लोग डालते हैं खाद के द्वारा या उर्वरक के द्वारा, उसकी उपलब्धता कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो खरपतवार जो होते हैं, वो पौधों के लिए जो पोषक तत्व, जल और प्रकाश जो उनको मिलता है, उसको जो मुख्य फसल होते हैं उससे छीन लेते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही प्रभावित होती है। इसलिए किसानों और कृषि प्रबंधकों, उनको यह अत्यंत आवश्यक है कि वो ध्यान रखें कि मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक, इन तकनीकों में तो मल्चिंग, उन्नत सिंचाई प्रणालियां जो कि आजकल बहुत उन्नत प्रणालियां उपलब्ध हैं, रासायनिक और जैविक खरपतवार नियंत्रकों का उपयोग और फसल चक्रीकरण शामिल है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मल्चिंग का जिक्र किया है, ये बहुत ही बढ़िया तकनीक है, कई किसान भाई इसको अपनाते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई के तरीके हैं या सिंचाई की प्रणालियां हैं, वो भी मृदा ताप को नियंत्रण रखने में सहायक हो सकती हैं क्या?
2: जी हाँ, सिंचाई चूंकि पानी है और हम जानते हैं कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम पानी जब भी नहाते हैं कुछ करते हैं तो हमारा शरीर का तापमान कम होता है, या फिर हमें प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर का तापमान कम होता है। उसी तरीके से पौधों के लिए भी होता है कि जब हम उन्हें सिंचाई देते हैं तो उन्हें पानी मिलता है, तो उन्हें ज़्यादा तापमान कम करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। तो इसलिए मिट्टी में कितनी पानी है और हम कौन सी सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है पौधों के अच्छे वृद्धि और पैदावार के लिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, शेड नेटिंग जो की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
2: हाँ, ये शेड नेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रभावी तकनीक है जो कि तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती हैं, जैसे कि हमने बात करी मल्चिंग की, सिंचाई प्रणाली की, शेड नेटिंग की, गहरी जुताई भी उसमें शामिल है, फसल चक्रीकरण, ये सब शामिल है। जो मल्चिंग होता है, ये मिट्टी की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो धूप से सीधे मिट्टी को बचाती है और मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, जिससे जो तापमान रहता है मिट्टी का वो नियंत्रित रहता है। मल्चिंग होते हैं, ये जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जैविक में जैसे कि जो पुआल होता है, स्ट्रॉ, पत्तियां होती हैं पौधों की जो झड़ती हैं, लकड़ी के जो चिप्स होते हैं, ये सब शामिल है। और अजैविक मल्च की बात करें तो प्लास्टिक सीड्स है जो कि हम आजकल खेतों में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम सिंचाई प्रणाली की बात करें तो उसमें आजकल बहुत सारे अच्छे सिंचाई प्रणाली है जो पानी की गुणवत्ता को भी नियंत्रित करते हैं और कम पानी में ही हम ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। ये प्रणालियाँ मिट्टी को उचित मात्रा में नम रखकर और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोककर मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करती हैं। तो ये जो ड्रिप सिंचाई होता है, ये मिट्टी की सतह के करीब पानी को पहुंचाता है, जिससे वाष्पीकरण के माध्यम से शीतलन का प्रभाव होता है और इसमें हम कम मात्रा में ही ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने अच्छा प्रश्न किया था शेड नेटिंग, तो शेड नेट फसलों को सीधी धूप से बचाते हैं, जिससे मिट्टी की सतह का तापमान कम हो जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका उपयोग हम नर्सरी के पौधे, जो हमारे सीडलिंग होते हैं, जो छोटे छोटे युवा पौधे हैं, या वैसे पौधे जो जिनको छाया पसंद है, जैसे कि हम बात करें अदरक है, हल्दी है, या फिर चाय के बगान, तो छाया पसंद वाले जो फसल होते हैं उनके लिए आदर्श होता है।
1: डॉक्टर आराधना जी, आपने ये जो तीन चार जो है कारक बताए हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो फसल चक्रीकरण जो होता है,
2: हुँ.

0: कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: हाँ, फसल चक्रीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती से मिट्टी में जैविक पदार्थों का योगदान बदलता रहता है, जिससे मिट्टी के तापमान पर अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे लाभ यह है कि मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है, जिससे तापमान नियंत्रण में मदद मिलती है। अगर हम खेत में एक ही फसल लगाते हैं तो उसकी जड़ एक पर्टिकुलर गहराई तक जाती है, तो वो होता है कि मिट्टी के तापमान को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं तो किसी की जड़ गहराई तक जाती है, किसी की छिछली रहती है, तो वो मिट्टी के तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो गहरी जुताई होती है, ये मिट्टी की गहरी परतों में हलचल उत्पन्न कर देती है, जिससे गर्मी का समान वितरण हो जाता है। ऐसे हम देखें कि जो सतही भाग रहता है उसमें ज़्यादा गर्मी रहती है, नीचे के भाग में कम गर्मी रहती है, लेकिन जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो वो समान वितरण हो जाता है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित आराम से किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के कॉम्पैक्शन को कम करना और जड़ों के लिए गहराई तक पहुँच कर सुधार करना भी होता है।
0: तो ये तो आपने बताया मृदा ताप को नियंत्रण करने के कुछ कारक हैं और किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, तो आप बताएं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक कौन कौन सी हैं?
1: खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीकें किसानों के लिए, किसान भाई जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो खरपतवार होते हैं, ये फसलों के विकास के लिए जो जरूरी पोषक तत्व, जल और प्रकाश, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा, उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारे जो मुख्य फसल रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए कंपटीशन का माहौल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता में कमी आती है। मैनुअल वीडिंग, यानी कि हम अपने हाथ के द्वारा या जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं, जैसे हम देख

0: सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके उनके लिए कंपटीशन का माहौल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता में कमी आती है। मैनुअल वीडिंग यानी कि हम अपने हाथ के द्वारा या जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि खुरपी और फावड़ा और उसके अलावा साइकिल वीडर आजकल आ गया है, उन सब के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे खरपतवार हमारे खेत में होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो ये साधारण बहुत ही साधारण उपकरणों के द्वारा उनको उखाड़ के फेंका जा सकता है। अगर हम बात करें तो ये छोटे खेतों और बगीचों के लिए तो बहुत ही प्रभावी है और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन अगर हमारा खेत थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा एरिया में हम करना चाहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। इसका लाभ ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि इसके मिट्टी को हानि भी कम पहुँचती है और खरपतवार को हम छोटे एरिया में छोटे जगह में पूरी तरीके से सफाई इसकी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर आराधना जी, आपने मल्चिंग का बताया, तो मल्चिंग से ये तो सुना है कि नमी को संरक्षित किया जाता है,
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन खरपतवार कैसे इससे रुक जाते हैं?
0: जब हम मल्चिंग करते हैं तो जैसा हमने कहा कि पुआल, स्ट्रॉ, पत्तियां जो हैं वो सब डाल देते हैं या प्लास्टिक मल्च जो होते हैं उन सबको डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको फैला देते हैं तो जो खरपतवार की बीज जो होते हैं वो उनका अंकुरण कम हो जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, पानी भी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, तो उनके अंकुरण को बीजों को रोक देता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि इसमें पत्ते, घास या प्लास्टिक ये सब हो सकते हैं, तो ये मिट्टी की नमी बनाने, जैसा आपने भी कहा कि उसके अलावा ये खरपतवारों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये भी है कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि ये सूर्य की रोशनी को खुद ही सोख लेते हैं, तो जिससे जो हमारी सतही तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये अंकुरित बीज जो ऑलरेडी अंकुरित कर चुके हैं, क्योंकि हमने बात पहले करी कि अंकुरण को रोकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी अंकुरित हो चुके हैं वो भी कभी कभी खत्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो खरपतवार नाशी है या फिर हर्बिसाइड्स है, इनका भी हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब हमारा क्षेत्र जो होता है खेती का वो बहुत बड़ा होता है, तो फिर ना ही वो हाथ से मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है मैनुअल वीडिंग से, ना ही मल्चिंग से, तब खरपतवार नाशी का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि वो जैविक प्रकृति के भी हो सकते हैं या रासायनिक भी हो सकते हैं, तो ये जो रासायनिक खरपतवार नाशक जो होते हैं उनका उपयोग करके खरपतवारों को हम बड़े एरिया में आसानी से सफाया उनका कर सकते हैं। इसमें कुछ चयनित होते हैं जो कि विशेष प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको ही मारते हैं, और कुछ गैर चयनित होते हैं जो कि सभी प्रकार के खरपतवार जो हमारे खेत में होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इसका लाभ ये है कि ये तेजी से और व्यापक रूप से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी मिट्टी पानी सब प्रदूषित हो रहे हैं। अगर हम इसको जरूरत के अनुसार ही प्रयोग करें तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से प्रदूषण बहुत बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि ये खरपतवार जो होते हैं वो प्रतिरोधकता उसमें उत्पन्न हो जाती है। एक बार अगर आप जिस हर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं बार बार आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि 4-5 सालों बाद अगर आप उसका प्रयोग करते तो वो खरपतवार उससे नहीं मरते हैं, प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ी सी सावधानी इस मामले में हमें बरतने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, तो ये हर्बिसाइड्स का उपयोग करने में हमें सावधानी जरूर बरतना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था जैविक नियंत्रण का, तो यदि खरपतवारों पर नियंत्रण करना है जैविक रूप से तो वो तरीके कौन कौन से होंगे?
0: हमारे प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे कीट, बैक्टीरिया, कवक ये सब दिए हैं जो खरपतवार खेतों में होते हैं मुख्य फसल के साथ, उनको अपने आप मारने में सक्षम होते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो उन कुछ चयनित कीटों, बैक्टीरिया, कवकों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो खरपतवार उसको मार सकते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, इससे पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी और पानी का प्रदूषण भी नहीं होता है। केमिकल्स का जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल आहार श्रृंखला में आ गया, कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उसको भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं और ये दीर्घकालिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। इसके अलावा थोड़ा जैसे हमने फसल चक्रीकरण की भी बात की थी मृदा ताप नियंत्रण में, वो यहाँ भी बहुत ही प्रभावी होता है। तो वो जो फसल चक्रीकरण होते हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलें हम इसमें उगाते हैं और वो खरपतवारों के लिए उनके सबके साथ अनुकूलन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक फसल के साथ तो वो अनुकूलित हो सकते हैं, हर फसल के साथ नहीं अनुकूलित हो सकते हैं, तो इस तरीके से उनका कंट्रोल हो जाता है। इससे खरपतवारों के विकास को प्राकृतिक रूप से हम रोक सकते हैं और इसका यह लाभ है कि ये मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और खरपतवारों के विकास को भी कम कर देते हैं।
1: डॉक्टर आराधना जी, काफी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई और जाहिर सी बात है कि बातों को हमारे किसान भाई जो है अपने खेतों में जरूर प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है मृदा का ताप और खरपतवार पे वो नियंत्रण प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आप नहीं बता पाई हैं, तो चलते चलते आप जरूर वो बातें बताएं ताकि हमारे किसान भाई जो है ध्यान रखेंगे उनका।
0: हाँ, ये मृदा

0: आफताब और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीकों जिसकी हमने बात करी, उन प्रभावी तकनीकों का समावेश किसी भी कृषि प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी के तापमान का संतुलन और खरपतवारों पर नियंत्रण स्थापित करने से फसलों की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है, जिससे कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है। ये जो तकनीकों की बात करी हमने, जैसे कि मल्चिंग, सही सिंचाई पद्धतियों का उपयोग, जैविक और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण और फसल चक्रीकरण, इन सबको अपना के हम खरपतवारों का प्रबंधन भी कर सकते हैं, मिट्टी के भी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, मृदा के ताप को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई और कृषि प्रबंधक नवीनतम तकनीक और पद्धतियों को अपनाएं और उन्हें समझें, जिससे वे अपने खेती के अभ्यासों को और अधिक सुधार सके। तो इस प्रकार से प्रभावी मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण रणनीतियों का उपयोग करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद होती है, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है बल्कि यह स्थायी कृषि की ओर एक अच्छा कदम होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इन तकनीकों को समझा जाए और इसको लागू करें अपने खेत में और सही तरीके से उपयोग।
1: डॉक्टर आराधना कुमारी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक, इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी। आप यहाँ बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, अभी सुनिए अपन भेंटवार्ता। विषय है तो मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी और उनसे भेंट कर रहे हैं महेश भैया। सो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं लोकगीत। जी गाओ है विजय लता पाराशर ने।

विला ने बना होगा वो है। अब बात करेंगे विस्तार को मतलब क्या है। विस्तार को मतलब है, इको पूरा नाम कह दें तो वो है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। मतलब कि एक तरह की जो बहुभाषी सिस्टम है, जी में आप कोई भी भाषा में अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ले सकते हैं। और यदि सरल शब्दों में कहें तो जो एक डिजिटल कृषि सलाहकार है। अब बात करें कि जो काम कैसे करते हैं, तो आप लोग उनको बता दें कोई भी कृषक भैया बहन ये मोबाइल या फोन कॉल से उपयोग कर सकते हैं। एक AI वॉइस असिस्टेंट ई में जवाब देते हैं। और आपके कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि यह सबसे ज़्यादा फायदा जो हमारे कृषक भैया बहनों को हो रहा है, खास करके मौसम की सही जानकारी मिलत है, संगे संगे फसलों के हेतु उचित सलाह दी जात है, कीट व रोगों के नियंत्रण हेतु सटीक जानकारी दी जाते हैं, संगे संगे मंडी के का भाव चल रहे हैं और आपकी फसलों के लाने का भाव मिलेंगे वो आप लोगों को जानकारी मिलत है, आपकी मृदा को स्वास्थ्य कैसो है या आपको आवे वाई समय में कौन सी फसल बोने हैं, ये विषय में भी जानकारी दी जात है। और इसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमारे कृषकन के लाने लाभकारी हैं और उनको आपको लाभ लेने चाहिए, ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी आप ई भारत विस्तार AI टूल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और आप ई के अधिक जानकारी के लाने की आप वेबसाइट पे जाएं और जानकारी लें और ई को लाभ जरूर उठाएं। तो भैया बहनों देखो, चर्चा अपनी चल रही है, बातें अपन कर रहे हैं और अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। सुनत है लोकगीत जी गाँव है घासीराम पटेल और उनके साथी अन्य।

तो भैया बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ो। आज आप लोग उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा 2026 में लॉन्च करोगो एक अत्यंत आधुनिक एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म है भारत विस्तार, जो खास तौर पे कृषकों के

वैसे भाई। तो भैया बहनों, अब कार्यक्रम में चूंकि बातें हमें बहुत करने हैं, मनो समय की कछु मर्यादा है और चलवी की बिरिया हो गई, तो आप लोगों को बता दें कि कल ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी बहनें सुनेंगी भेंट वार्ता। विषय रहे महिलाओं में थायराइड की समस्या और निदान। जानकारी देंगी डॉक्टर तृप्ति सक्सेना। तो भैया बहनों, अब

आप सबसे विदा लें। और ये चलती भी रिया, आप सबसे विदा लेवे से पहले जो ही कहेंगे कि गर्मी की ऋतु है, लू चल रही है, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। तरल पदार्थों को अधिक सेवन करें, मसालेदार तेल तीखे पदार्थों को कम सेवन करें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार की और स्वयं की देखभाल करें। काहे कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो खान पान में सतर्कता बरतें, स्वस्थ रहें। और अब चलती विधियाँ, आप सबको अमृता बहन की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है
1: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप उपलब्ध हैं और साथ ही वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अपना देश। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आरडी बर्मन और आशा भोसले की आवाजें थी। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म का गीत, जिसको लिखा मजरूह ने। संगीत इस गीत में आप एंजॉय कीजिएगा आरडी बर्मन साहब का। आइए सुने इस गीत को।

तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और आडी बर्मन की आवाज़ों में। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं आडी बर्मन और आशा भोसले की ही आवाज़ों में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है कारवां फिल्म से। मजरूह ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की आडी बर्मन साहब ने। आइए सुने इस गीत को।

0: Monica!
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम हमने सजाया है आरडी बर्मन साहब के संगीत से। कार्यक्रम का अगला गीत किताब फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की और साथियों की आवाज़ें हैं, और इस गीत को लिखा गुलजार साहब ने, संगीत सजाया आरडी बर्मन साहब ने। आइए सुने किताब फिल्म का ये गाना।

किताब फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे आर डी बर्मन की आवाज़ में। संगीत आर डी बर्मन का ही था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं श्रोताओं, आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए इस गीत से। इस गीत को हमने लिया है हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से। आवाज़ें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की। आइए सुने हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का ये गाना।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम।

पॉप म्यूज़िक के कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना आबिदा परवीन का गाया ये पॉप गीत। कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित पॉल का गाया ये पॉप गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुमित पॉल की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला पॉप गीत। इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया था प्रवीण भारद्वाज ने। सुमित पॉल के ही गीत पॉप गीत के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। सुमित पॉल के गाए कार्यक्रम के अगले गीत से, गीत और संगीत प्रवीण भारद्वाज का है।

0: सुमित पॉल के गाए इस गीत के साथ ही पॉप म्यूजिक का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बालाघाट है, रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या
1: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश

कि रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
3: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति

0: संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है। आउटसाइड द स्कोप ऑफ
0: यूनिफॉर्म सिविल को। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने

0: 37,000 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए, कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए।

एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म कभी कभी से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। आपके लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल शिव हरि का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कने भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं है।
2: है मस्कुलर, है पॉपुलर, है मस्कुलर, है पॉपुलर, स्पेक्टेक्युलर, इज अ बैचलर।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन

देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

श्रीधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन ए आर रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए आर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी, और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

दीनदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनीदयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।

बीनी दयाल एक अच्छी गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचाकर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो हम

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाहने वाले

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

पे। कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ता उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

न जीते बनता है न मरते बनता है। दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को। पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को। शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का

कभी कभी आपको रौंद कर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर।

इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर और साथ ही OTT वेव्स प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

ये रात ये फिजाएं, आओ शमा बुझा कर हम आज दिल जलाएं। बंटवारा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। मजरूह ने इस गीत को लिखा था और संगीत था एस मदन का। सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं ओपी नैयर का संगीत। साहिर के बोल हैं, नया दौर फिल्म का गीत है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

9/2/11। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आप सुनेंगे। मजरूह ने इस गीत को लिखा और एसडी बर्मन ने इस गीत की धुन तैयार की। आइए सुने 9/2/11 फिल्म का ये गाना।

सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म का गीत। ओपी नैयर का संगीत, मजरू के बोल, आवाजें एक बार फिर आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। आइए सुने मेरे सनम फिल्म का ये गाना।

मेरी सनम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रही थी। सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम जारी है, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत, जमाने को दिखाना है, इस फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे ज़माने को दिखाना है, इस फिल्म का ये गाना। आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की। सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।

एन इवनिंग इन पेरिस, आई एस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने। आइए सुने एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गाना।

0: एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बालाघाट है, रात्रि के 11 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसी

0: वातावरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: ओन भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay